0: अस्पताल को एक द्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी
1: यहाँ हिंसा प्रभावित महिला बाल बालिका तथा पुरुषहरूका लागि बिना भेदभाव एकै स्थानबाट सेवा प्रदान गरिन्छ।
0: हजुर, यहाँ शारीरिक चोटपटकको उपचार र निशुल्क चिकित्सकीय जाँच,
1: कानूनी उपचारका लागि फोरेन्सिक परीक्षण,
0: मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षाको व्यवस्था,
1: आवश्यक परेमा सुरक्षित आवास र पुनर्स्थापनाको समन्वय।
0: हिंसा सहनु हुँदैन, आवाज उठाउनु पर्छ। रामेछाप अस्पतालमा स्थापना भएको ओसीएमसी ले 2079 सालदेखि निरन्तर तपाईँको गोपनीयता कायम राख्दै सेवा दिँदै आएको छ।
1: थप जानकारीको लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस् रामेछाप अस्पताल रामेछाप। सम्पर्क नम्बर 97652033 वा 98444410/40। इमेल dhramechap@gmail.com।
0: हिंसामुक्त समाज निर्माणमा हाम्रो साथ एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र रामेछाप अस्पताल रामेछाप।
2: हजुरको आवाज हजुरकै साथ, यो हो हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
3: कि बिल्डर माफिया के साथ लिंक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में लिंक्स, और यहाँ तक कि ग्लोबल टेररिस्ट के साथ भी लिंक्स है। ऐसे लिंक्स उसकी बीवी के साथ भी हो सकते हैं। पहले प्रूफ तो करो यार।
4: Hey!

रात भर यही हंगामा चलता रहा। खूब हंसी मजाक, नाच गाना और दारू। मगर किसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। आने वाले 5 सालों में

0: vindt het een lirre.
1: You kill me.
2: What happened?
1: Ik wou het een lirre.
0: Op kijk erin. Exactly, Danny. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्सा थोड़ी कंफ्यूज लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज दिल करे ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।